0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় 40-50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে যা বৃদ্ধি পেয়ে ঘন্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের আজ পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल।

0: शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at the Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector.
1: India has set a new global benchmark with this project, while countries

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं।

इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे ये पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: राज्यस्य जालन्धर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70+400+5,000 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतर देशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत कतर संबंधान सुदृढ़ी कर्तुं तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्य वर्षस्य नीट यूजीत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11,00,000+ अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः, प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः, विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाहः सिलिगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारत दलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अंतिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की कई

0: विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाखाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC Under-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, the Prime Minister will also visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. These projects are aimed at strengthening connectivity, improve passenger convenience and accelerate economic development in the region. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 6 redeveloped Amrit railway stations in Keralam through video conferencing today, along with 75 other Amrit stations across the country. The

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना

0: में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माण

0: आता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई।

0: में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish e Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology, while countries like Germany and

ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। यह कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। अभी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 9:11 और ये समय होता है आपके उस कार्यक्रम के नाम जिसका नाम है रसधारा। भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम है और इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम रसधारा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज कोई ना कोई एक विषय होता है, तो आज भी एक विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। उस पर ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी, लेकिन आगाज करना चाहूंगी इस गीत के साथ जिसे आप सुनेंगे उदित नारायण, गुरदास मान और कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम वीर ज़ारा।

आज जिस विषय पर कार्यक्रम रसधारा में ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी, यानी कि आज का जो विषय है वो है भारतीय क्रांतिकारी अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली, इनका जन्म जो है वो 1909 में हुआ था। एक निडर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हिम्मत से इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उन्हें दुनिया भर में याद किया जाता है। और उनके जीवन की खास बातें भी आपसे साझा करूंगी, लेकिन अगला गीत आप सभी के लिए सोनू निगम की आवाज में।

0: जी हाँ दोस्तों, आज कार्यक्रम रसधारा में हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी अरुणा आसिफ अली पर। शुरुआती विद्रोह की बात करूं तो कालका अब हरियाणा में एक बंगाली ब्राह्मो परिवार में जन्मी अरुणा, उन्होंने 1928 में कांग्रेस के जाने माने नेता आसिफ अली से शादी करके अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। चलिए यहां मैं आपको सुनवाती हूं पीपली लाइफ से ये अगला गीत।
1: देश मेरा रंगरेज़ है बाबू,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी

और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मौसम संबंधी विशेष सूचना। हल्की से मध्यम आंधी और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज हवा जो है वो चलने की संभावना है। और अगले 2-3 घंटे में कोलकाता, हावड़ा, हुगली जिले के कुछ हिस्सों में असर पड़ने की संभावना है। सूचना समाप्त हुई।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 9:37 और इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। और आज कार्यक्रम रसधारा में हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रांतिकारी अरुणा

आसिफ अली पर। और अब अगला गीत आप सभी के लिए लता मंगेशकर की आवाज में, देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों।

9 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस ने बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती देते हुए तिरंगा फहराया। किसने? अरुणा असफ अली ने, जो विरोध का एक हमेशा रहने वाला प्रतीक बन गया। अंडरग्राउंड आंदोलन, गिरफ्तारी से बचने के लिए वे छिप गईं और इंकलाब जैसे अंडरग्राउंड पब्लिकेशन छापकर और लोगों को इकट्ठा

करके संघर्ष जारी रखा। उन्होंने दिल्ली की पहली मेयर के तौर पर काम किया और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन को की जो है वो को फाउंडर बनी। अवार्ड्स की बात करूं तो अरुणा असफ अली उन्हें इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज

मरण उपरांत भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भारत रत्न दिया गया। आज रसधारा में हमने बहुत सारी बातें आपसे साझा की, भारतीय क्रांतिकारी अरुणा असफ अली से संबंधित। और अब बता दूं आपको कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 9:48 और 10 बजे तक आप ये कार्यक्रम सुनते हैं रसधारा। वैसे मैं बता दूं 10 बजे के बाद भी अगर मुझे सुनना चाहें तो आपको ट्यून करना होगा 107 FM रेनबो, वहां 10:02 से 11 बजे तक रहूंगी लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और हाँ, ये भी तो बताना है आपसे कि ठीक 12 बजे आऊंगी इसी संचयिता चैनल पर लेकर कार्यक्रम सुरभि। लेकिन फिलहाल आपसे आज्ञा चाहूंगी और चलते चलते आप सभी के लिए एक देशभक्ति गीत फिल्म बॉर्डर से। इस गीत को आप सुनेंगे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत जो साझा। बॉर्डर 2 से ये गाना मैं सुनवाऊंगी, बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर 2 से। विशाल मिश्रा ने भी साथ दिया है इस गीत में और रूप कुमार राठौर ने भी। जावेद अख्तर ने कलमबद्ध किया है और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट

0: यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled Father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to India-Qatar relations. The National Testing Agency, NTA, has declared results of NEET UG 2026 re-exam. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. Gujarat Anti-Terror Squad, ATS, has arrested 5 persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed, JEM, outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shira, Mohammed Ayub Kadiwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sunsara, Shafia Reyes Mukti and Mohammed Hassan Kardia. They were apprehended from Khadiyal village in Sidhpur Taluka.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हो और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:15 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबों को मेरा प्यार भरा आदाब। पहली बारिश होती थी तो याद आते थे, अब जब याद आते हो तो बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर का मौसम कुछ ऐसा ही हंसी है। हल्की फुल्की बारिश, कभी दरमियानी बारिश जारी है और ऐसे मौसम में दिल कुछ खास सुनने को करता है। फिलहाल देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। असल इंसान वो होता है जो इंसाफ पसंद हो। बहुत कम लोग होते हैं जो इंसाफ पर खड़े उतरते हैं। हर मजहब इसकी ही सीख देता है कि इंसाफ में बेईमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी और नाइंसाफी का हिसाब भी हर हाल में होगा। तभी तो किसी ने खूब कहा है कि ये माना कि तुम शहंशाह हो अपनी गली के, ये माना कि तुम शहंशाह हो अपनी गली के, पर इंसाफ की चक्की में अमीरी ना गरीबी। जी हाँ दोस्तों, आज 17 जुलाई है। अक्वामे मुत्तहिदा ने आलमी सतह पर संगीन जुराइम के मर्तकब अफराद को इंसाफ के कठेरे में लाने के लिए बैन अक्वामी फौजदारी अदालत के अहम किरदार का दफा करते हुए कहा कि ये आलमी निज़ाम इंसाफ का नहायती अहम सतून है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जा रहा है। ईएनओ की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त सामने आए जब अमेरिका की जानिब से बैन अक्वामी फौजदारी अदालत को ख़त्म करने की बात की गई। बैन अक्वामी निज़ाम इंसाफ का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। इस अदालत को दुनिया के बहुत से रुकन ममालिक की हमायत हासिल है। ये संगीन जुराइम के मर्तकब अफराद को जवाबदार ठहराने में अहम किरदार अदा करती है। वाजह रहे कि अमेरिका स्टैचू रोम माहदे का फरीक नहीं है। ये 1998 का वो माहदा है जिसके तहत नीदरलैंड के शहरी हेग में कायम बैन अक्वामी फौजदारी अदालत वजूद में आई। वॉलिसी जनरल में शाये होने वाले एक मजमून में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कौमी खुद मुख्तारी

की और आज़ादी पर भी जोर दिया। तो दोस्तों ये था आज का आईना, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और जब बात इंसाफ की हो रही है तो गुज़िश्ता शब और अगले चंद घंटों तक बारिश का अमकान है। ये बारिश कल से ही जारी है, लेकिन कभी कभी मौसम कुछ और इंसाफ मांगता है, यानी किसी को टूट कर चाहने की ख्वाहिश और इजहार मोहब्बत। असल में मोहब्बत का इजहार कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है और बहुत कम लोग ही इसका इजहार कर पाते हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसे ही खूबसूरत प्यार भरा नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम मुगले आज़म, कलाम में शकील बदायूनी और मौसिकी है नौशाद की। जी हाँ दोस्तों, आज तक इतने खूबसूरत अंदाज में शायद ही किसी ने प्यार का इजहार किया हो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:23 हुए हैं। अजय दोस्तों जो वक्त इशारा है अंजुमन का और वक्त हो रहा है अंजुमन में मंजरनामे का।

इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। दोस्तों ये स्कीम अकलियतों के लिए अगली जेली स्कीम है, बल्कि इसके वसी रहनुमा खतूत का हुक्म है कि मुतनासिब तादाद में आंगनवाड़ी मराकज को ब्लॉक्स और देहातों में कायम किया जाए जिनमें काफी अकलियती आबादी है, ताकि गजाइयत, सेहत की देखभाल और स्कूल से पहले की तालीम तक को मसावी रसाई को यकीनी बनाया जा सके। ICDS दोस्तों ये अकलियतों की वो स्कीम है जिसके अहले कम्युनिटीज, बिशमौल कमजोर अकलियती ग्रुप 6 बुनियादी खदमात हासिल करते हैं। इजाफी गजाइयत कैलोरी के फर्क को पूरा करने के लिए बच्चों 0 से 6 साल और हामला दूध पिलाने वाली माओं के लिए घर पर राशन और गर्म पका हुआ खाना सेहत आमा के निजामों के साथ हम आहंगी में चलती है। हेल्थ चेकअप, ग्रोथ मॉनिटरिंग और रूटीन चेकअप और विटामिन की तकसीम, रेफरल सर्विसेज खसूसी निगाहदेश के लिए बीमारी या गजाई किल्लत के शिकारों को शनाख्त, गजाइयत और सेहत की तालीम, बच्चों की देखभाल और हिफ्जानी सेहत के बारे में माओं के लिए मशावरात, वज़ीर आज़म की जानिब से नाफिज करदा स्कीम पर अमल दरामद और मिनिस्टर की जानिब से की गई रहनुमाई है। दोस्तों यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अकलियतों की बहबूद के लिए नया 15 निकाती प्रोग्राम जो वाजा तौर पर हिदायत करता है कि ICDS प्रोजेक्टों के इंतखाब में अकलियतों पर मरकुज इलाकों को तरजीह दी जाए। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पसमानदा कम्युनिटीज़ को तरक्की के मसावी हकूक मिलें।

इंडिया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम जो 1975 में शुरू हुआ और अब दुनिया के सबसे बड़ी कम्युनिटी पर मुबनी इकदाम में से एक है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला ख्वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को देही कबायली और मुआशी तौर पर पसमानदा कम्युनिटीज तक पहुंचाने पर खसूसी तवज्जो के साथ इब्तदाई बचपन के मुकम्मल खिदमात फराहम करता है। ये प्रोग्राम बच्चों की गिजाई किल्लत, स्कूल की नाकिस तैयारी और तकसीम शुदा खिदमात के फ्राहमी के बाहम मरबूत चैलेंजों से निपटने के लिए कायम किया गया है। ये कम्युनिटी पर मुबनी आंगनवाड़ी मराकज के एक वसी नेटवर्क के जरिए हासिल करता है जो वन स्टॉप हब के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों, जिमनी गजाइत, प्री स्कूल की तालीम, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, हेल्थ चेकअप और देखभाल करने वाली तालीम के एक प्लेटफॉर्म में शामिल करते हैं जो इसके पैमाने और सयाक व सबाक के लिहाज से मखसूस तासिर के लिए अहम है, जिसकी वजह से प्री स्कूल के अंदराज में नमाया इजाफा हुआ और मुतद्दद रियासतों में गजाई किल्लत में कमी की दस्तावेजी शक्ल दी गई। ये प्रोग्राम मरकजी सतह पर ख्वातीन और अतफाल की तरक्की की वजारत के जेर क़यादत कसी सती ढांचे के जरिए मुल्क भर में नाफिज किया गया और रियासती हुकूमत और मुकामी हकाम के जरिए में इस पर अमल किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम आंगनवाड़ी खिदमात एक मरकजी स्पॉन्सरशुदा स्कीम जो रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जरिए दर्ज है उसके तहत ये लागू की जाती है। उम्र की हद जो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों की गिजाइत और सेहत की हालत को बेहतर बनाना, बच्चे के मुनासिब नफ्सिया

फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक निहायत ही हसीन नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम कुर्बानी, जिसे लिखा है इंदिवर और मौसिकी है कल्याण जी आनंद जी की।

0: तेरी चाह से निगाहों में हया थी वरना, तेरी चाह से निगाहों में हया थी वरना, कितने मुंतजर थे गुनाहगार बनाने वाले। दोस्तों आज दिन है जुम्मा और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं कुछ सीखने सिखाने के मौके। और आज हम सीखेंगे साइंस के कुछ ऐसे पहलुओं को जिसे बड़े हल्के फुल्के अंदाज में समझाया है मुश्ताक अहमद ने। पेश है मुश्ताक अहमद की ये खास पेशकश साइंस खेल खेल में।
1: सामिन कराम, पेश है हफ्तरोजा प्रोग्राम साइंस खेल खेल में। साइंस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर खेल, हर हरकत, हर तजुर्बे में छुपी है। इसी बात को समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे फिजिकल साइंस के काफी माहिर उस्ताद मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है।
2: बहुत शुक्रिया।
1: आज का मौजू क्या है, हमारे सामीन को क्या बताने वाले हैं?
2: आज जो है हम जो बताने वाले हैं अपने सामीन को वो पानी, वाटर
1: जी।
2: पानी साइंस के ताल्लुक से अगर हम लोग देखें कि पानी है क्या, पानी हम लोग पीते हैं माशाल्लाह, है ना। अब पानी जो है जिंदगी के लिए जरूरी तरीन जो है, अगर जिंदगी की बका है तो पानी से ही है
1: जी। बिल्कुल, पानी है तो जिंदगी है,
2: पानी है तो जिंदगी है। और हम ये भी जान रहे हैं कि पानी जो है, अगर हम इस प्लेनेट को अपना चार पार्ट करें तो अगर हम इसको देखें, 1/4 में हमारा जमीन है, 3/4 में हमारा पानी
1: जी।
2: तो पानी तो हर जगह ही है। ये पानी जो है अगर इसको साइंस के नजरिए से समझा जाए, पानी का मॉलिक्यूलर मास, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पानी का केमिकल नेम, ये सारा कुछ ये एक दिलचस्पी का बायस होना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए कि पानी को एक्वा कहते
1: जी।
2: और अगर इसका केमिकल नाम अगर हम लोग जानना चाहें तो पानी को कहते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। पानी का जो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, और पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। देखिएगा, अक्सर बहुत सारी जगहों में अगर अभी वाटर बॉटल निकल रहे हैं तो वहाँ H2O भी लिखा रह रहा है।
1: H2O,
2: हाँ, H2O ये पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो पानी को हम लोग जो है अक्सर हयात भी कहते हैं कि ये जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि जानदार जो इस जमीन पर आबाद है वो पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी उनके लिए जरूरी है, इसके बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, है ना। और ये जो इसमें पानी है, पानी ज्यादातर जो है वो आपको खुश जहाँ जगह है वहाँ उसकी अहमियत का पता चलता है। जैसे आप रेगिस्तानी इलाके में चले जाएं कि वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं
1: जी।
2: पानी एक ऐसा चीज है जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, साइंटिफिकली आप पानी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम भले पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, H में और O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है पानी, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर हम पानी बना नहीं सकते
1: जी।
2: ये एक हकीकत है,
1: ये तो कुदरत की एक नेमत है जो हमें
2: तो इसको एकदम समझने की कोशिश करना है कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये गैर नामियाती मरकब है, तीनों हालतों में पाई जाती है, ठोस में भी यानी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी। सॉलिड फॉर्म में बर्फ इसकी मिसाल है,
1: बहुत आसान
2: है ना, बच्चे समझ पाएंगे कि बर्फ जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आइस हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, ये पानी का एक फॉर्म है। इसी तरह लिक्विड फॉर्म में पानी खुद है अपने आप, और गैसियस फॉर्म में वेपर की शक्ल में, भाप की शक्ल में यही पानी जो है, या शबनम की शक्ल में। सर्दियों में देखिएगा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।

0: हैं कि पत्तों पर
1: जी,
0: पानी
1: वे
0: की बूंदें
1: शबनम के
0: पड़े, वो
1: कतरे आदि।
0: शबनम के कतरे। ये एक लंबा प्रोसेस है कि कंडेंसेशन का अमल होता है जिसके जरिया से वो पानी की बूंदें बनती हैं। तो पानी जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए पानी को अक्सर हयात कहा जाता है कि तकरीबन सतह जमीन पर, आपको मैंने पहले भी बताया, 75% के आसपास पानी ही है
1: जी
0: और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो पानी ही है ना। उसके अलावा ही कोई चीज हो सकती, चाहे लोहा हो, तांबा हो, कोई भी चीज हो, तो ये पानी सबसे ज्यादा है। पानी का अगर हम लोग देखें तो इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी है जो आम तौर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक बार हमारे इलाके में एक मैजिक दिखलाने के लिए आए, तो वो बोल रहे थे ये जो पेपर है, पेपर इसका तुम जायका बताओ कैसे, पेपर का
1: पेपर का
0: जायका।
1: जाकर
0: हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे। बोले बेटा मीठा है, तो कोई लड़का बोला मीठा है, कोई बोला थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो इसी तरह पानी जो है, पानी का जायका के बारे में बोलें तो देखिएगा, पानी का जायका जो है दो तरह के वाटर होते हैं जो हम लोग आमतौर से बोलते हैं, मीठा पानी एक खारा पानी।
1: हाँ,
0: मीठा पानी जो होता है वाकई क्या मीठा होता है?
1: हाँ, ये बात का कॉन्सेप्ट जरा हमारे सामने को बताएं
0: क्या
1: कि मीठा पानी
0: मीठा
1: क्या,
0: पानी क्या वाकई मीठा होता है? उसमें तो चीनी डालने पर मीठा होगा, फिर शरबत बनेगा,
1: फिर ऐसे मीठा क्यों कहा जाता है?
0: तो फिर मीठा क्यों कहा जाता है? मीठा का या किसी भी चीज का जो कंसेप्ट है ना, उसका ताल्लुक जो है कंपेरिजन, एक हम लोग ना एब्सोल्यूट टर्म नहीं है वो
1: जी,
0: वो कंपेरेटिव टर्म है। अगर हम लोग जैसे बोले ना कि कम मीठा ज्यादा मीठा, तो ये कंपेरेटिव हो रहा है। तो इसी तरीके से पानी का जो जायका है, वो जायका जो है वो अगर बच्चे समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, ट्यूबवेल का पानी पिएगा एक बच्चा और एक कॉरपोरेशन का पानी पिएगा, तो बोलेगा कॉरपोरेशन वाला मीठा है, ट्यूबवेल वाला टेस्ट नहीं है,
1: टेस्ट
0: नहीं है, है ना। ये टेस्ट नहीं है, इसका मतलब पानी क्या अलग अलग है? अलग अलग नहीं है, पानी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर किसी कदर पीने में अच्छा जायकादार लगता है, और हार्ड वाटर में चूंकि आयरन वगैरह ज्यादा होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से उसका जायका जरा
1: अच्छा
0: नहीं लगता। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पानी आमतौर से किसी रंग का नहीं होता
1: जी, बेरंग है,
0: वो बेरंग है, इसमें कोई रंग नहीं
1: है,
0: एकदम शफाफ है, इसके अंदर किसी किस्म की बू भी नहीं होती, बेमजा भी है, किसी तरह का मजा भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी हम बोले कि मीठा है, ये साइकोलॉजिकली एक मामला है कि हम लोग जैसे पानी पीते तो हमको, मेरा पानी ट्यूबवेल का पानी है, हमको ठीक लगता, मेरा साइकोलॉजिकली वो एक्सेप्ट कर लिया दिमाग। किसी और को देते हैं तो बोलता नहीं ये पानी तो अजब है, आपका पानी हम पियेंगे तो हमको अजब लगेगा। तो ये साइकोलॉजिकल, ये आम दर्जा हरारत पर भी पाया जाता है। आमतौर से अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो वाटर जो है आम दर्जा हरारत पर पाया जाता है। ये जो है नॉर्मल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर के तहत सबसे इम्पोर्टेंट बात
1: जी,
0: 0 डिग्री पर यह पानी जमता है और 100 डिग्री पर पानी उबल, यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है।
1: यानी 0 डिग्री अगर टेम्परेचर
0: कर दिया
1: हो जाता
0: जाए
1: है, तो फिर वो बर्फ हो जाता है,
0: तब वो बर्फ। उसमें एक मतलब अलग से बात आती है, वो इस जुमले में नहीं है, लेकिन चूंकि बात आएगी तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि पानी 0 डिग्री पर है और बर्फ भी 0 डिग्री पर है। तो उसमें एक छुपी हुई हरारत है जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं
1: जी।
0: जब तक कि वो छुपी हुई हरारत उस पानी में से ना निकाल लिया जाए, तब तक वो पानी गरचे वो 0 डिग्री पर हो, बर्फ में तब्दील
1: नहीं।
0: वो क्या है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, हर ग्राम में से 80 कैलोरीज ऑफ हीट आपको निकालना होगा उस पानी में से, तब जाके वो बर्फ में तब्दील होगा। या फिर बर्फ है 0 डिग्री पर है, उसको आपको पानी बनाना है, तो आपको 80 कैलोरीज ऑफ हीट पर ग्राम उसको देना होगा, ये एक अलग विषय हो जाएगा। और 100 डिग्री पर क्या है कि पानी उबलता है। अब उसमें भी क्या है कि देखिएगा, एक उबलता हुआ पानी 100 डिग्री से कोई अगर बर्न होता है, उस पर गर्म पानी गिर गया, बच्चा है, या एक पानी जो है उबल रहा है और उससे इंजरीज हुआ, तो दोनों में मोहलिक ज्यादा खतरनाक वो होता है जो उबलता हुआ पानी से, जो भाप से हम इंजरीज होते बनस्बत के पानी के, कि उसके अंदर भी क्या है कि छुपी हुई हरारत है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन।
1: अच्छा, ये वेपराइजेशन
0: जी, उसमें क्या है कि उसके हर ग्राम में आपका 537, किसी किताब में 540 लिखा हुआ है ग्राम, लेटेंट हीट वो हीट कैलोरीज ज्यादा होती, इसकी वजह से अगर हम एक खोलता हुआ पानी हमारे ऊपर गिर गया और एक पानी जो है अगर हम बॉयल हो रहा है और उसके भाप से हमको इंजरीज हुआ तो वो ज्यादा मोहलिक।

0: के जो भाप से होता है,
1: जो भाप
0: से। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है बच्चों के ताल्लुक से। वो ये दूसरा ये है कि पानी का जो डेंसिटी होता है ना, उर्दू में कसाफत बोलते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इसको बोलना चाहें साइंटिफिकली इसका डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होगा किसी भी चीज का, कि यूनिट वॉल्यूम में उसका जो मास होगा वो उसका डेंसिटी कहलाएगा। तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज वन। और इसका इस्तेमाल करके क्या होता है कि ये जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, खासतौर से मछलियां, ये सर्द ममालिक में जिंदा रहती हैं, ये इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस एक्सपेंशन ऑफ
1: वाटर। बर्फ होने के बावजूद भी
0: नीचे का तह में अल्लाह ताला इस तरीके से कुदरत ने निजाम बनाया है कि आपको कुदरती तौर पर वो मछलियां जो हैं तह में जाकर छुप जाती हैं और गर्चे ऊपर में पूरा बर्फ का तौदा है, ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ऑक्सीजन आने की कोई जगह नहीं है, बावजूद इसके वो 4 डिग्री टेम्परेचर उनके लिए एनफ होता है सरवाइव करने के लिए। तो ये कुदरत ने इंतजाम कर रखा है वो जो मछलियां हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए। ये आमतौर से पानी जो है बिजली और हरारत का बैड कंडक्टर होता है इससे आमतौर से, लेकिन अब बच्चे देखते हैं फिल्म आई थी 3 इडियट, बच्चों ने देखा कि कोई पेशाब कर रहा है तो उसमें क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, तो वो क्या है कि उसको बच्चों को समझाना कि पानी में जब कोई इम्प्यूरिटीज चला आएगा, तो इसीलिए बारहा कहा जाता है कि बारिश का जब पानी कहीं लग गया हो तो बाहर ना निकला जाए, इससे इलेक्ट्रोकट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें क्या है कि वो पानी जो प्योर नहीं है इम्प्योर है, और इम्प्योर वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
1: इसलिए वाटर लॉगिंग के दौरान अक्सर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से
0: बंद कर दिया जाता है
1: क्योंकि हादसा हो जाते हैं उस वक्त,
0: जी उसको बचाने के लिए। और ये मतलब बहुत ये है पानी के खुसूसियत में से, पानी के एक अगर हम खुसूसियत की बात करें तो स्पेसिफिक हीट पानी का एक होता है, तो पानी का स्पेसिफिक हीट जितनी भी चीजें हैं उसमें पानी जो है उसका स्पेसिफिक हीट 1 होता है। और इस 1 होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में देखिएगा हम लोग पानी का इस्तेमाल जो करते हैं, जैसे सेंक देना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन, सेंक देना क्या है कि कोई अगर बॉटल में गर्म पानी डाल दिया उसको सेंक दिया जा रहा है, तो उसको क्यों, बॉटल में दूध भी डाल सकते थे, तेल भी डाल सकते,
1: पानी क्यों?
0: दूध और तेल इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट पानी का सबसे ज्यादा होता है। उसको यूं समझा जाए कि पानी ज्यादा देर तक गर्म रह सकता है बनस्बत के तेल और दूध के, उसमें उससे सेंक देने में आपको क्या होगा कि आपको जिल्द को भी नुकसान नहीं होगा और पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। सेंक देने में हम क्या करते हैं अमूमन जो है पानी का इस्तेमाल करते, इसी तरह स्पेसिफिक हीट की ही ये वजह है कि बहुत सारे वो इलाके हैं जहां पर झील है या फिर झील के किनारे जो मकामात हैं वहां पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलती हैं, और इसकी वजह से क्या है कि आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के चलने से उस इलाके का जो क्लाइमेट भी होता है ना वो मुतदल रहता है, क्लाइमेट का भी इस पर असर है, पानी की वजह से ये खसूसियात होती है। अब पानी में एक अहम बात और मैं इस ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि आजकल जो है हम लोग पैकेज वाटर भी पी रहे हैं और फिर पानी जो है फिल्टर भी पी रहे हैं,
1: जी
0: है ना, पानी को फिल्टर कैसे किया जाए, अगर ये फिल्टर पानी है उसको और खालिस कैसे किया जाए, तो उसको करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल होता है। क्लोरीन जब पानी में मिलता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांग होने की वजह से पानी के जरासीम को मार देता है, जिसकी वजह से हम जो है फिल्टर पानी को खालिस कर सकते हैं। ये जो है आज का हमारा वाटर का जो टॉपिक है ये आज हम लोग इसको समअप कर रहे हैं।
1: जी आज आपने पानी के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें हमारे सामीन को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों आप अभी समाप्त फरमा रहे थे साइंस खेल खेल में मुश्ताक अहमद की खास पेशकश। दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ ए तलत सलाहुद्दीन और फिलहाल वक्त हो रहा है एक प्यारे से खूबसूरत नगमा सुनने का। सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को राजू बन गया जेंटलमैन से, कलाम है महेंद्र तेलवी और मौसीकी है जतिन ललित की। देखिए किस तरह खूबसूरती से कोई आगे बढ़ने का पैगाम सुना रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके दे रहा है। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को।

दोस्तों आप अभी समाज फरमा रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्ण, अलका याग्निक और कुमार सानू को। दोस्तों गुज़िश्ता शब से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियत ने अगले कुछ घंटों तक बारिश के पेशनगोई भी की है, लेकिन जब बात बारिश की होती है तो दिल कुछ खास तौर पर मचलने लगता है। तभी तो किसी ने खूब कहा है, ये बारिश का मौसम ये ठंडा समा, ये बारिश का मौसम ये ठंडा समा, ये भी कोई वक्त है हमसे दूर रहने का। तो दोस्तों सुनते हैं एक नहायत ही हसीन नगमा 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे गाए है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। कलाम है जावेद अख्तर का और मौसिकी है राहुल देव बर्मन की।

न्या दोस्तों, अंजुमन ने वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। मैं तलत सलाउद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ और फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। अब कुछ ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे वेस्टर्न प्रोग्राम, जहाँ साथ होंगी सिसलिया बैनर्जी।

ये है आकाशवाणी कोलकाता का संजयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और ये समय होता है आपके उस कार्यक्रम का जिसका नाम है सुरभि। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम है ये और पहला खंड इसमें होता है चर्चा है और दूसरा पहल। चर्चा है का आज का जो विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है सुलक्षणा पर्वत कार्यक्रम सुरभि में। और पहला सेगमेंट का जो टॉपिक है वो मैंने बता ही दिया है, इंटरनेशनल जस्टिस डे। हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास का समर्थन करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो इस दिवस को 17 जुलाई 1998 को रोम संधि, रोम स्टैच्यू को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना हुई। घोषणा की बात करूं तो 1 जून 2010 को कंपाला युगांडा के में आयोजित रोम संधि के समीक्षा सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। आईसीसी की भूमिका की बात करूं अगर इस दिन से जुड़ी हुई तो ये पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर मुकदमा चलाता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के दी हेग में स्थित है। और अब अगला सेगमेंट जो है वो है पहल, और पहल का आज का विषय जो है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और ऐसा है कि इस पर ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी, लेकिन फिलहाल आप सभी को सुनवाना चाहती हूं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप

0: न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वैसे श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि आज जो है एक और दिवस बड़ी खुशी से पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं, और वो है, क्या बता दूं, वो है विश्व इमोजी दिवस। और आज के डिजिटल जो युग है, इसमें इमोजी भावनाओं की सबसे सरल और सबसे प्यारी भाषा बन गए हैं। एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है, इसीलिए खुशियां बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और विश्व इमोजी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसा है कि जो हमारे श्रोता होते हैं ना, उन्हें भी बड़े बेसब्री से इंतजार होता है कि अगर उनकी कोई बात दिल की हो तो उसे भी हम कार्यक्रम में शामिल करें, और हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को शामिल करें। और हमारे बहुत सारे श्रोता आज ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ, इमोजी दिवस पर भी, विश्व इमोजी दिवस पर भी कुछ कहा जाए। तो चलिए, मैंने अपने तरफ से ये बात रख दी, हो सकता है कि आप श्रोताओं में से भी ही किसी के दिल की बात हो ये। और फिलहाल अगला गाना कपूर एंड सन से बुद्धू सा मन, अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज में।

ये जो प्यार भरा हलचल है ये होने दो, क्यों कि ऐसा है दोस्तों कि अगर ये ना हो तो फिर जिंदगी में जिंदा दिली जो है वो गायब हो जाएगी। और फिलहाल मैं रुक करती हूँ कार्यक्रम सुरभि के जो अगला खंड है, सेगमेंट है पहल की ओर। और पहल में आज का विषय है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली जो है जेनेरिक दवाइयां और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराना है। और इन केंद्रों पर दवाइयां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90% तक कम कीमत पर मिलती है। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल

केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य देश के जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है और इसकी कोशिश होती है सस्ता और सुलभ दवा बनाना। प्रमुख लाभ और विशेषताओं की बात करें तो सस्ती दवाइयां आम आदमी की दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करना, गुणवत्तापूर्ण दवाइयां जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO GMP के मानकों को पूरा करती है। उत्पाद सूची की बात करूं तो यहां लगभग 2000 से अधिक दवाइयां और 300 से अधिक सर्जिकल उत्पाद जो है उपलब्ध हैं और इसका लाभ जो है आप उठा सकते हैं। और कम से कम 120 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो। जो किराए या खुद की हो, सरकारी सहायता की बात करूं तो सरकार द्वारा दुकान के फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और बिक्री पर 15% का इंसेंटिव दिया जाता है। आवेदन से जुड़ी जो आधिकारिक जानकारी है, नियम और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अब जो शेष समय बचा है, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 12 बजे से लेकर 12:20 तक, तो स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 12:15 और 52 सेकंड। और अब समय उछला है कि आपकी रेडियो 2 सुलक्षणा पर्वत आपसे आज्ञा ले। और चलते चलते जब बात हुई है प्रधानमंत्री की जन औषधि परियोजना से संबंधित, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सुनाएं जिसमें आपको सुनकर भी मजा आ जाए। चलिए इस गीत को सुनिए और इसी को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली

0: बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनोवस्का दावकोवा क्रिस्टिजन

0: मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন শরৎ, শিল্পী প্রমন্থ মোহন ঠাকুর, রাগ ভীম পলশ্রী। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন সুরজিৎ সাহা।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়া মোহিব 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্সে, ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবা এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে। সংবাদ একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत

0: वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has launched several developmental projects around 4,700 crore rupees in Chandigarh in key areas healthcare, education and road infrastructure. In a program organized at the Punjab Engineering College Chandigarh this afternoon, the Prime Minister dedicated to the nation advanced mother and child care centre built at a cost of 505 crore rupees and advanced neurosciences centre built at a cost of 440 crore rupees. He also laid foundation stone of 259-bed critical care block under PM ABM scheme at PGIMER Chandigarh. Mr. Modi also dedicated Zirakpur-Kurali Greenfield Highway to the nation and laid foundation stones for the Zirakpur Bypass and the Chandigarh Airport AeroCity Greenfield Highway. He also inaugurated hostel blocks at Punjab Engineering College and Government College of Sector 46 alongside a new multipurpose auditorium at Punjab University. Addressing a gathering, Prime Minister Modi said, "With the development of Chandigarh, people's lives have been transformed, but its benefits extend beyond the city, reaching the people of Haryana, Punjab and Himachal Pradesh as well."
2: आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
2: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजे नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। और यहां तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
3: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया है। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है।

0: वहाँ पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहाँ से बह के जाता है। आप वहाँ किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हों। वही नहर, मैं कई बार जब वहाँ से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गाँव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था तो जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिले तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गाँव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गाँव से और मैंने देखा कि ये मेरे गाँव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इश्यू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे, उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजता पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए, वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10,000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10,000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके मीडिया में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ, और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहां तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे, हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो 0 एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए, कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन। हाँ ना, हम दोनों को तो जुनून था, सब

0: तो थोड़ी ना हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है। हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके
1: पहुंचाए।
0: जी जी। तो लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है, तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस।
1: अच्छा।
0: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है, और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे, उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत

0: रहे हैं भाई, पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे, तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वाले से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ओनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ओनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाले के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पे खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता हैं। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूं, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आईलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था, इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पे उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल। आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर अब वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकते, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था, दुजाना गाँव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आईलैंड के ऊपर, वहाँ बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे, और पूरा तालाब एक एकदम बत्तखों से भरा हुआ है।

0: अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है अभी, मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और एमएनसी में जॉब कर,
0: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे, घर वालों को उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के 1 महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, 1-2 भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दो वहाँ।
1: तो पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की, उसके बाद,
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ही है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: तो छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ अब इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आते तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने 1-2 मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ

0: मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते हो,
1: वही लोग।
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा सिर्फ हम टीवियों में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए। तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा,
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे। अच्छा, मछली पालन का काम करना है? मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए। तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना।
1: अच्छा।
0: मैंने मछली पालन कराया। अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंड सेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है, धीरे धीरे धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ। अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे। दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी है जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे। है क्या, जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता था छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं। हम क्या है, अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक की बना रहा हूं, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूं, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं कि निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए

0: CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहें सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ कर लिया।
1: बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते। छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

वर्ल्ड फ्रेंड स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:40 और 40 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम उर्वशी में। उर्वशी के अंतर्गत आप सभी के लिए आज यानी कि शुक्रवार की शाम हम लेकर आते हैं सुरुचि। और सुरुचि के अंतर्गत आज बातें होंगी बल मिठाई और सिंगोरी की, जो कि उत्तराखंड की खासियत है। तो दोस्तों, बातों की जो शुरुआत है वो करना जरूरी है क्योंकि समय है आज हमारे पास बेहद कम। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज जिन विषयों पर बातें होंगी, ये दोनों ही जो व्यंजन हैं, व्यंजन क्या इन्हें मिठाइयाँ कहेंगे, ये दोनों ही मिठाइयाँ बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि ये दोनों ही जो हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। वादियों की महक है इन दोनों रेसिपीज़ में। तो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में बताना चाहूँगी आपको इन दो विषयों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊँ कि हम बातें करने जा रही हैं उत्तराखंड के खास रेसिपी की। आपको बता दें कि एक ऐसा स्वाद है मिठाई का जो कि उत्तराखंड के वादियों से हम तक पहुंचता है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड केवल हिमालय बर्फ से ढकी हुई चोटियों, देव भूमि, मंदिरों और प्रकृति सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यहाँ की पारंपरिक मिठाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और अपनी अलग पहचान रखता है। बल मिठाई जो है ये

हाँ, क्या एक खास रेसिपी है आपको बता दें, बल मिठाई उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है और इसे विशेष रूप से अल्मोड़ा की में पहचान मिलती है और कोई पर्यटक अगर इधर घूमने जाता है तो ज़रूर ये खाए बिना या इसे खरीदे बिना उसकी यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि बाल मिठाई जो है ये इसका रंग गहरा चॉकलेट जैसा होता है और ऊपर से छोटे छोटे सफ़ेद चीनी के दाने इसे मोतियों जैसा आकर्षक रूप भी देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मिठाई है ये 150 से 160 वर्ष पहले अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हलवाइयों ने इस मिठाई को बनाने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे इसका स्वाद इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि ये उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान बन गया और आज ये मिठाई देश विदेश तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें इसे बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध और आसान जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको शुद्ध खोया जो होता है उसे लेना होता है। खोए के अंदर आपको इसे धीमी आंच तक आपको लगातार पकाया जाना होता है और साथ ही घंटों तक चलाने के बाद उसके रंग में जब परिवर्तन आ जाता है वो बन जाता है गहरा भूरा, तो हो जाता है वो काफ़ी हद तक तैयार। फिर उसमें चीनी मिलाकर उसे ट्रे में जमाया जाता है। बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर ऊपर से सफेद चीनी की जो गोलियां मिलती हैं उससे सजाया जाता है और ये जो है ये खास प्रक्रिया है जिससे बाल मिठाई आराम से बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये उत्तराखंड के शादी त्योहार, जन्मदिन, गृह प्रवेश, धार्मिक कार्यक्रम और विशेष अवसरों पर जरूर बनता है। केवल ये एक मिठाई नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों दूसरी जो रेसिपी है उसके बारे में बातें करने से पहले आप सभी के लिए पेश है कविता सेठ के साथ अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

वेल फ्रेंड्स, कविता सेठ के साथ अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में आप सुन रहे थे कब से ये गीत और उर्वशी की आज के सेगमेंट यानी सुरुचि में हम बातें कर रहे हैं उत्तराखंड की वादियों से दो रेसिपीज की। तो एक रेसिपी के बारे में हो गई है बातें, अब बातें करते हैं सिंगोरी की। दोस्तों, यदि बाल मिठाई उत्तराखंड की शान है तो सिंगोरी उसकी सुगंधित पहचान है। सिंगोरी मुख्य रूप से अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में बनाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मालू के पत्ते में लपेट कर बनाया जाता है। ये पत्ता सिंगोरी का एक अनोखा प्राकृतिक जो है उसे सुगंध देता है और साथ ही जो किसी अन्य मिठाई में स्मेल जो है, खुशबू जो है नहीं होती है, वो हमें मिलती है सिंगोरी में। तो आइए पहले जानते हैं कि सिंगोरी आखिर बनती कैसे है। तो सबसे पहले ताजा खोए को अच्छी तरह से पकाया जाता है और उसमें चीनी, इलायची और कभी कभी केसर या मेवे भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को मालू के पत्ते में यानी शंकु यानी कि कोन जो होता है, कोन के आकार में लपेट दिया जाता है और साथ ही कुछ समय के बाद पत्ते में प्राकृतिक खुशबू मिठाई के साथ समा जाती है और उसका स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि उत्तराखंड की ये दोनों मिठाइयां यानी कि माल मिठाई और साथ ही सिंगोरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। उत्तराखंड की ये दोनों मिठाइयाँ न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और यहाँ की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय जीवन की मिठास अपने भीतर समेटे हुए रहती हैं। वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 5:50 यानी कि आपसे कुछ ही देर में लेना है आपसे विदा। फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अगला गीत, ये गीत आप सुनेंगे फिल्म ये जवानी है दीवानी से और इस गीत में आवाज है रेखा भारद्वाज के साथ तोछी रायना की। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका। अगला कार्यक्रम आपसे कुछ ही देर में ठीक 5:55 पर। तब तक के लिए ये गीत आपके सुरेले सफर का साथ ही रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में

0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects in Jalandhar, Punjab, worth over 5,470 crore rupees. The projects worth over 5,470 crore rupees aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience, and accelerating economic development in the region. The Prime Minister inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is their endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagarik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहाँ जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा।
1: टुडे the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects including Delhi-Amritsar-Katra Expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours. Speaking on the occasion, Railways Minister Ashwani Vaishnav called the launch of the country's first hydrogen-powered train a historic achievement, saying it reflects India's resolve to develop indigenous hydrogen technology. The Prime Minister launched also several developmental projects in key areas including the health sector in Chandigarh and addressed a gathering. Ahead of the monsoon session of Parliament, a meeting of the group of ministers was held in New Delhi today. Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Rajiv Ranjan Singh, Kinjara Rappu Ram Mohan Naidu and Kiran Rijiju were present in the meeting. During the meeting, the leaders chalked out the strategy for the upcoming parliamentary session. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania.

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 31 सेकंड। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम वार्ता के अंतर्गत जो बातें करने जा रहे हैं, ये विषय है आज का अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। दोस्तों, आज 17 जुलाई है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दोस्तों, ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, जाति का हो, धर्म का हो या वर्ग का हो, न्याय पाने का समान अधिकार रखता है। न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव गरिमा, समानता, शांति और मानवाधिकारों की रक्षा का आधार है। दोस्तों, 17 जुलाई 1998 यानी 1998 को इटली की राजधानी रोम में रोम संविधि यानी रोम स्टैट्यू को अपनाया गया और इस ऐतिहासिक समझौते के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस उपलब्धि की स्मृति में हर वर्ष आज के दिन यानी 17 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में लोगों को न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध, पीड़ित को उचित अधिकार और सम्मान दिलाना, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कानून के समक्ष भी समानता सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। जब समाज में न्याय होता है, तभी लोगों का विश्वास व्यवस्था पर बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की भूमिका के विषय में यदि बात की जाए, तो इसका उद्देश्य है उन गंभीर अपराध

अपराधों के मामले में न्याय सुनिश्चित करना, जिनका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ता है। ये न्यायालय उन मामलों को में कार्य करता है जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता। मानवाधिकार और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और उसे न्याय नहीं मिलता, तो समाज में असमानता और असंतोष बढ़ जाता है। इसीलिए न्याय केवल अदालतों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। हमारी न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प व्यक्त किया जाता है। ये बताता है कि न्याय हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है। न्याय और युवाओं की भूमिका यदि बात की जाए इस विषय पर, तो युवा पीढ़ी न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करना, कानून का सम्मान करना, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के अधिकार का सम्मान करना, साइबर बुलिंग, हिंसा, नफरत फैलाने वाली गतिविधियों से दूर रहना, सत्य और ईमानदारी का पालन करना, यही छोटे छोटे कदम एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। आज भी दुनिया के अनेक हिस्सों में लोग युद्ध, हिंसा, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें ये संदेश देता है कि शांति और न्याय के साथ साथ चलते रहना है, और साथ ही जहां न्याय नहीं होता वहां स्थायी शांति भी संभव नहीं होती। दोस्तों, अगर हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल मन में आता है, तो इसके जवाब भी बेहद सरल हैं। सच बोलना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, किसी के साथ अन्याय होते देखें तो आवाज उठाना, कानून का पालन करना, समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये सभी हमारे एक तरह से हम अपने योगदान दे सकते हैं। अपना योगदान देकर हम समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दोस्तों, समय समय पर हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जिसने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर न्याय की स्थापना का संदेश पूरे विश्व को दिया। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने भी हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने और साथ ही न्याय की स्थापना का संदेश देने की राह दिखाई। साथ ही बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो वे भी अपने अधिकारों का सम्मान करने और समान अधिकारों के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए अपने कार्यकाल में हमेशा अड़े रहे, और उनके विचार आज भी हमें न्यायपूर्ण समाज बनाने में प्रेरणा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों की दीवारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों, व्यवहार और जिम्मेदारियों में भी दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों, ये दिवस किसी खास वजह से मनाया जाता है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जीवन में भी इसके जो उद्देश्य हैं इन्हें उतारना सीखना चाहिए। यदि हम हर व्यक्ति अपने जीवन में इसे उतारे, तो कहीं ना कहीं हम अपना समाज के प्रति योगदान दे सकते हैं और समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं जहाँ हर मनुष्य सुख सुविधा के साथ रह सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने के पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि पूरे समाज में हर व्यक्ति जागरूक रहे, ताकि ना वो अन्याय होने दे और ना ही अन्याय करे। ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमारा भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व को निभाना न सिर्फ हमारा कर्म है, बल्कि हमारा धर्म भी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। और दोस्तों, आज है एक खास दिवस जिस दिवस को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, आज ही के दिन यानी 17 जुलाई के दिन। मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की, और इस खास विषय पर आज हमने बातें की इस कार्यक्रम और चैनल के जरिए। तो दोस्तों, 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। और आज का अगला कार्यक्रम, अब से कुछ ही देर में आप सुन रहे थे इस खास वार्ता को इस चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। दोस्तों, इस वार्ता में आज बस इतना ही, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। इसके ठीक बाद 6:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम गुलगुलशन, और इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए आपसे कुछ ही देर में आज सुनेंगे न्यूज़ इन संस्कृत।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेल यानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। BGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशाराज्यानाञ्च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका PV सिन्धुः टोक्योनगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह 14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च कृतम्। प्रधानमन्त्री 57,500 किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीयरेलविभागे विगत 12 वर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: अवसरेस्मिन् रेलमंत्री

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

वेल फ्रेंड्स, मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम यानी गुल गुलशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:35 और 2 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर इस कार्यक्रम को गुल गुलशन में आप सभी के लिए पेश हैं बेहतरीन तरानों के नजराने। तो एक के बाद एक खूबसूरत तराने आप सभी का कर रहे हैं इंतजार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जगजीत सिंह की आवाज में कोई भी गजल और भी बेहतरीन हो जाती है, और ऐसी ही एक बेहतरीन गजल अभी आपने सुनी। और ये जो गजल थी इसमें आवाज तो जगजीत सिंह की थी, लेकिन साथ ही आपको बता दें ये फिल्म साथ साथ से ली गई थी। और अगली जो गजल है आइए सुनते हैं इसे अनुराधा पौडवाल के साथ चंदन दास की आवाज में।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इस ओर इशारा कर रही है कि इस गजल को सुनते सुनते आप सभी से अभी के लिए विदा लेना होगा, क्योंकि 6:56 और 20 सेकंड है स्टूडियो की घड़ी में समय, यानी कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस समाचार। और आपको बता दें, ठीक आप सुनेंगे जो अगला समाचार, उसके विषय में ठीक 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी और न्यूज़ इन इंग्लिश 7:05 पर। फिलहाल आप सभी के लिए आज की आखिरी अंतिम गजल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:30 और 41 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। और दोस्तों, आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल जो है ये आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप सुन सकते हैं इस चैनल और कार्यक्रम को। दोस्तों, आप सभी के लिए शुरू हो चुका है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। दर्पण में सबसे पहले आप सभी के लिए हर रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह पेश है एक नजर। दोस्तों, एक नजर के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी के लिए पेश है आज का खास विषय। एक नजर के अंतर्गत आज हम बातें करने जा रहे हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे की। जी हाँ, ये खास दिन है जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। आज है 17 जुलाई और इस अवसर पर हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मना रहे हैं। और ये दिवस न्याय, मानवाधिकार के साथ साथ समानता के महत्व को याद दिलाती है। साथ ही दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जागरूकता फैलाना जो अन्याय और अत्याचार के शिकार हुए हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1998 में यानी 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम शहर में रोम संविधि को अपनाया गया था। और इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के ही एक शहर में स्थित है। दोस्तों, ये न्यायालय मानव के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार के साथ साथ आक्रामकता जैसे गंभीर अपराधों के लिए भी इस जो है न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और इसका उद्देश्य है केवल अपराधों को दंड देना नहीं बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना भी। तो दोस्तों, ऐसे में हमें भी ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हमेशा सत्य और न्याय का साथ देंगे, किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध नहीं करेंगे, मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को इस खास दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने आसपास भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं कोई अन्याय ना हो।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:33 और 33 सेकंड। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और आपको बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार की शाम हम दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत एक नजर के बाद लाते हैं विधि विधान और समाधान। किस विषय में होंगी आज बातें ये जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये तराना। आइए सुनते हैं इस तराने को। आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के साथ निकिता गांधी की आवाज में फिल्म का नाम केदारनाथ। दोस्तों कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत प्रस्तुत है विधि विधान और समाधान। आज इस सेगमेंट के अंतर्गत हम बातें करने जा रहे हैं एक खास बैंकिंग की व्यवस्था की। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत की बैंकिंग की व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नींव के विषय में, और ये नींव है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। दोस्तों जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, एटीएम से नकदी निकालते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं या फिर ऋण लेते हैं, तब शायद ही हम ये सोचते हैं कि इन सभी गतिविधियों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए कौन सा कानून कार्य करता है। दोस्तों इसका उत्तर है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इस अधिनियम के बारे में अगर बातें की जाए तो स्वतंत्रता के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र को संगठित करने और ग्राहकों के हित की रक्षा के उद्देश्य से ये अधिनियम वर्ष 1949 में लागू किया गया। प्रारंभ में इसका नाम बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 था, जिसे बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया। दोस्तों इस कानून का मुख्य उद्देश्य बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करना, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को नियामक शक्तियां प्रदान करना है। इसके अलावा इस अधिनियम की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा पड़ी, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले कई बैंक बिना पर्याप्त नियमों के संचालित होते थे और अनेक बैंक बंद भी हो जाते थे, जिससे लोगों की जमा पूंजी डूब जाती थी। इसलिए सरकार ने ऐसा कानून बनाया जो बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाए। दोस्तों इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख विशेषता है लाइसेंस व्यवस्था। कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बैंकिंग व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक की निगरानी आरबीआई को बैंकों के निरीक्षण करने, दिशा निर्देश जारी करने तथा आवश्यक होने पर कार्यवाही करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। साथ ही अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो न्यूनतम पूंजी बैंकों को निर्धारित न्यूनतम पूंजी और आरक्षित निधि बनाए रखना भी आवश्यक होता है। दोस्तों निदेशक मंडल बैंक के निदेशक की नियुक्ति तथा उनके कार्यों पर भी इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। साथ ही अगर बात की जाए नई शाखा खोलने की तो नई शाखा खोलने अथवा बंद करने के लिए भी ये जो नियम है इनका पालन करना हो।

सकता है। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में इस नियम के विषय में, इस विशेष अधिनियम के विषय में और भी बातें जरूर होंगी, लेकिन फिलहाल पेश है ये गीत।

वेल फ्रेंड्स, आज बातें हो रही हैं एक खास अधिनियम के विषय में, यानी कि बैंकिंग अधिनियम के विषय में। तो आपको बता दें कि ये जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत बैंकिंग लाइसेंस जारी करने, बैंकों को निरीक्षण करने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने, आवश्यकता पड़ने पर बैंक के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने, ग्राहकों के हित की रक्षा करने के साथ साथ ग्राहकों के लिए लाभ, ये अधिनियम सुनिश्चित करता है। बैंक सुरक्षित ढंग से कार्य करें, लोगों की जमा राशि सुरक्षित रहे, वित्तीय प्रणाली में विश्वास बना रहे, बैंक नियमों का पालन करे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ये सभी इसी अधिनियम के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान की, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाई गई और साथ ही निवेश को बढ़ावा मिला, आर्थिक विकास में सहायता और साथ ही साथ उद्योगों और किसानों के वित्त उपलब्ध कराने में मदद, ये सभी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी काफ़ी हद तक इसका योगदान रहा है। आज बैंकिंग के क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां भले हैं, जैसे साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, एनपीए इत्यादि, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कई बार हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस अधिनियम के अनुसार काफ़ी रेगुलेशंस हुए जिसके माध्यम से हमें सुविधा मिली।

आज कार्यक्रम दर्पण में बस इतना ही। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल देविका लेती है आपसे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

0: একটু পরেই দিল্লি কেন্দ্রের অনুষ্ঠান।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी।

0: नौकरी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस

100 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि RSS ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की 4th नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया

0: दुनिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The India government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सोबर्स का 89 साल की आयु में निधन। और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को हरियाणा के भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। 3 देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टैक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। 4 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने आज सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। ईरान की समाचार एजेंसी ने IRGC के हवाले से

0: रहा है कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के तहत किए गए। समाचार एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने सीरिया के अल तनफ क्षेत्र में स्थित अमरीकी विशेष अभियान कमान केंद्र पर अचानक हमला किया। एक रिपोर्ट।
1: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि हमलों के पहले चरण में कुवैत में अमरीकी सेना के अड्डे पर स्थित एक अमरीका के मिसाइल रक्षा निगरानी रडार, कई हथियार डिपो, 2 हिमर्स रॉकेट लॉन्चर और कई मिसाइलों को निशाना बनाया गया। IRGC ने सलमाह पठार पर स्थित एक नौसैनिक निगरानी रडार और ओमान के घनम क्षेत्र में स्थित एक अमरीकी हवाई निगरानी रडार पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा किया। इस बीच कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रही है। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एंडी बर्नहम को आज ब्रिटेन के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में आयोजित विशेष पार्टी सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि एंडी बर्नहम को 379 नामांकन प्राप्त हुए, जो नया नेता चुनने के लिए पर्याप्त संख्या थी। निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा औपचारिक रूप से सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपा गया। इसके बाद बर्नहम को सोमवार को राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान के मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उसने चेतावनी दी है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस के अंतर्गत व्यापार लाभों तक पाकिस्तान की निरंतर पहुंच 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षा अवधि के दौरान पाकिस्तान ने GSP+ ढांचे के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में कमियां दिखाई। एक रिपोर्ट।
2: आकलन के अनुसार पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा गया है। इसमें जबरन गायब होने और गैर न्यायिक हत्याओं के मामलों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता और कमजोर हो गई है। ये भी कहा गया है कि जबरन श्रम एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस आकलन में बलूचिस्तान और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अधिनियम और संबंधित कानूनों में हाल ही में हुए संशोधनों का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर बल देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें अभी भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ ने पाया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अपराधों के अभियोजन सीमित है। पाकिस्तान का कानूनी ढांचा धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को पर्याप्त रूप से मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करता। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: महान क्रिकेट ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का आज 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। एंडी बर्नहम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया। वे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर गैरी सॉबर्स का 89 साल की आयु में निधन और अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित

0: रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।